0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: विश्वकै पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडी

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364460।
1: शांति को आवाज रेडियो।

0: तेरे माया ने मूर्ति जा आज बंद मैं सुन ले रही हूँ
1: इच्छा तो मेरे पनी धेरे थी मैं जिस तिकार में स्पर्श करूं और की करूं मेरा आपने बातें ताले विवश हूँ मूर्ति जस्ते